नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

ईश्वर के किसी भी रूप का गुणगान करने पर स्वामी वे तुम्हारे ही चरणों में पहुंचता है। हे साईनाथ, तुम्ही भक्त वत्सल श्री राम हो, तुम्ही मर्यादा पुरुषोत्तम और दया निधान हो। तुम्हारी ही प्रेरणा से सबको यह शक्ति प्राप्त होती है कि वे सर्वत्र साई राम के दर्शन कर सकें। अब आपके सामने प्रस्तुत है राग देश पर आगृत ये बंदिश, जपत प्रभु रामचंद्र तेरो नाम।

ईश्वर के किसी भी रूप का गुणगान करने पर स्वामी वे तुम्हारे ही चरणों में पहुंचता है। हे साईनाथ, तुम्ही भक्त वत्सल्य श्री राम हो, तुम्ही मर्यादा पुरुषोत्तम और दया निधान हो। तुम्हारी ही प्रेरणा से सबको यह शक्ति प्राप्त होती है कि वे सर्वत्र साई राम के दर्शन कर सकें। अब आपके सामने प्रस्तुत है राग देश पर आगृत ये बंदिश, जपत प्रभु राम चंद्र तेरो नाम।